0: वार्तालाप करते। पातशाह नूं प्रश्न करदे कि महाराज आप जीआं दे जिहड़े सिख हन इह किसे प्रकार दा कोई योग नहीं करदे, योग साधना नहीं करदे। महाराज फिर योग साधना तो बिना ते इन्हां दी मुक्ति नहीं होवेगी, मुक्ति तो बिना 84 लख जूनां दे विच भटकदे फिरनगे पातशाह जी, फिर सिक्खी धारण करन दा फल की होया, फायदा की होया। धन गुरु रामदास महाराज जिया ने उन्हां दे प्रश्न अनुसार योग उत्तर दिता। भाई सिद्धो, भावें योग साधना होवे, भावें जग होवे, पूजा होवे, जेकर किधरे प्रेम तो हीणी है ना, हिरदे विच उस प्रेम, हिरदे विच उस परमेशर प्रति प्रेम नहीं जिहदी बाबत तुसी योग करदे हो, जग करदे हो, पूजा करदे हो, फिर यह जिन्ने भी धर्म दे कर्म ने, भावे ओ सेवा होवे, सिमरन होवे, भावे ओ पुन दान होवे, जेकर परमेशर दा प्रेम तुहाडे हिरदे विच पैदा नहीं होया, फिर यह सारा कुछ कीता कराया निसफल है, फिर यह बहुता एदा योग नहीं। ते साडे गुरसिख जेड़े गृहस्थ दे अंदर रह करके, परिवार दे अंदर रह करके उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं दिन रात सिमरना करदे ने, जिस सिमरन दे विच्चों फिर परमेशर दा प्रेम पैदा हुंदा है, उस नूं मिलन दी चाहता पैदा हुंदी है, फिर ए प्रेम दी बाबत ही जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, प्रेम दे रस्ते ते तुर करके ही उस परमेशर दी प्राप्ति हुंदी है। उस परमेशर दी जो प्राप्ति है ओही जीवन नूं मुक्त करदी है, 84 लख जूनां दे गेड़ चो कढ लैंदी है। तुसी रिद्धियां सिद्धियां दे मालक हो करके दुनिया नूं कौतक विखाउणे हो, शक्तियां विखाउणे हो, तुसी रिद्धियां सिद्धियां दे विच ही गुलतान हो करके उस परमेशर तक मंजिल तक पहुंचदे नहीं, रास्ते विच जो पड़ा आउंदा है उत्थे ही रुक के रिद्धियां सिद्धियां दा आनंद मानन लग जांदे हो। साडे गुरसिख रिद्धियां सिद्धियां नूं नहीं वेखदे, बेशक रिद्धियां सिद्धियां इन्हां दे मगरे मगर फिरदियां बेनतियां करदियां जी सानूं कोई सेवा बख्शो, पर साडे गुरसिख अपनी जिहड़ी निशाना है उह सिद्धा मंजिल ते रखदे, मंजिल ते परमेशर पति दी प्राप्ति करदे। ऐसा संगत जी जिस वेले धन गुरु रामदास महाराज जिया ने फिर आसा राग दे अंदर शब्द भी उचारण करके सुनाया कि जेड़े वाजे तुसी बजाउंदे फिरदे हो ओ प्रेम तो नाम तो खाली ने, ओ वाजियां दा कोई भाव नहीं, कोई बहुता लाभ नहीं। पातशाह ने फिर संगत जी उपदेश दे के समझाया है ते सारे जेड़े सिद्ध संतुष्ट हो गए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीती, महाराज साडे शंके निवृत हो गए ने, आप जी गुरु नानक महाराज जिया दा ही रूप हो, तुहाडे अंदर सच्चे पातशाह गुरु नानक महाराज जिया दी ही जोत मग रही है। एदा फिर आग्या लै करके गोविंदवाल साहब दी धरती तो इन्हां सिद्धां ने चाले पा दिते। फिर गुरसिख संगता ने पुछया, महाराज ए कौन सन जेड़े आए ते घड़ी दो घड़ी रह के चले गए? सचे सतगुरु गुरु रामदास महाराज जिया ने दसिया, भाई गुरसिखो एह जेड़ा गोरखनाथ दा पंथ है, ए सारे सिद्ध गोरखनाथ दे चेले ने, इन्हां ने कष्ट जोग करके पुठे लटक के धूने तपा के जल धारा करके जंगलां बेलियां तीर्थां दा भ्रमण करके रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर लईयां ने, हुण संसार नूं रिद्धियां सिद्धियां विखाउंदे ने ते संसार दे लोक भरम जांदे ने, ओह फिर बहुती इन्हां दी वडियाई करदे, बहुती इन्हां नूं माया आदिक देना करदे, बस इत्थे ही ए रस माणी जांदे ने। ए मन विच शंका करके साडी परख करन वास्ते आए सी। निम्रता दे पुंज गुरु रामदास महाराज जी आखदे, वड्डे सतगुरु गुरु नानक महाराज जिया ने साडी लाज रखना कीती है, असी इन्हां दे प्रश्नां दे योग उत्तर दे करके इन्हां नूं संतुष्ट करके भेजिया है। इदां सिद्धां दा जाणा होया, धन गुरु रामदास महाराज मुक्ति स्वरूप श्री गोविंदवाल साहब दी धरती ते बिराज रहे ने। आओ जिस प्रकार अगे गुर इतिहास आउंदा है, एक तपा महाराज जी उपर शंका करके प्रश्न करने लई आवेगा, उस नू महाराज फिर किवें उत्तर दिंदे ने। मान चित बिरतियां एकागर करिए, श्रद्धा भावना दे नाल गुरु नानक महाराज जी दे घर दा पवित्र इतिहास जो कवि संतोख सिंह जी ने मोतियां दे वांग परोया है, श्रद्धा भावना दे नाल श्रवण करिए जी।
1: रामदास।

0: प्रिय संग बिन कछ न गते।
1: करुणा पते पाठ भी साध संगत दी गुरबाणी जिथे भी आवे करुणा मैं करुणा पते ए पाठ संबंधक रूप दे विच इकट्ठे करने। लिखती रूप अलग अलग हो सकता है पर संबंधक रूप बोलने करुणा मैं करुणा पते इत्यादिक होर भी पाठ जिहड़े आउणगे बेनतियां कीतियां जाणगियां।

0: सुंदर तन ध्यान, सुंदर तन ध्यान हे, मन लुभद गोपाल ज्ञान हे, जाचक जान राखत मान, प्रभ मान पूर्ण दुख बदीरन सगल इच्छ पुंजंतिया, प्रभ मान पूर्ण दुख बदीरन
1: पुंजंतिया पूजंतिया, जिवें ज्ञानी जी ने उचारण किया है पप्पे तू पाठ नू तोड़ के जंतिया, पाठ इकट्ठा ही है पूजंतिया, इसे तरह ही उचारण करना ध्यान दे नाल।
0: प्रभ मान पूर्ण दुख बदीरन सगल इच्छ पुजंतिया, हर कंठ लागे दिन सभागे, मिलनाह सेज

मुसीबत चोट कर जाए, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। दूसरा, अपनी अकल तो चोट खा लवे, बड़ा ही सियाणा होवे, हर गल नूं बड़ी गहराई नाल लैंदा होवे। बीमार असी भी देखदे आ, पर इक्को ही दिन महात्मा बुद्ध ने जिहदा नां सिधारथ सी बीमार देखिया, बस दिल चोट खा गया। मुरदे असी भी देखदे आ, इक्को दिन एक लाश देखी, हिरदा चोट खा गया। बुढ़े मनुख असी भी देखते हैं, ज़ईफ ज्यादा उम्र वाले असी 90 साल दे असी भी देखते हैं। उन्हें एक दिन बुढ़ा मनुख देखा है, सड़क क्रॉस कर रहा सी, लाठी दे आसरे थे, दिल चोट कर गया। अकल इतनी बारीक, इनू कहिंदे हिंदी संवेदना, ऐसे मनुख दे अंदर संवेदना बहुत आउंदी है, हर गल नू छोटी दी छोटी घटना नू भी बहुत वड्डे रूप दे महसूस करता है। संवेदना, असी भी देखते हैं बुढ़िया नू, असी भी देखते हैं बीमारा नू, खुद भी बीमार होंदे हैं, असी भी मुरदिया नू देखे आवेगा, इक्को ही दफा देख के चोट लग गए। या तो अपनी अकल इतनी महान होवे, मनुख अकल तो चोट खा जाए, तो अकल तो चोट खा के भी मनुख उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। तीसरा, संसार तो कोई चोट लग जाए, बहुत वड्डा धनाढ़ सी दिवालिया हो गया है, बड़ी इज्जत मान मर्यादा से सरेआम बेइज्जती हो गई है, बड़ी पद प्रतिष्ठा से शक्ति से कुछ भी नहीं रहा, ऐसी हालत विच भी दिल चोट खा जाता है और निराश होके मनुख उदास हो जाता है। उदास होने दे, निराश होने दे तीन कारण ने। प्रथम, गुरु का शब्द चोट कर जाए, सत्संगी होवे, श्रोता होवे। दूसरा, अपनी अकल चोट कर जाए। तीसरा, संसार तो कोई दुख बहुत वड्डे रूप में चोट कर जाए। हुण मैं इसनों इस तरह बयान करा, जो अजे तक पूर्ण तौर ते निराश नहीं, उदास नहीं, ये कोई गहरा सरोता नहीं कि इनू शब्द ने चोट कीती होवे। दूसरा, ये कोई इतना अकलमंद भी नहीं, गुस्ताखी माफ, कि इनू अपनी अकल ही चोट कर जाए। तीसरा, अजे संसार तो भी इसनों कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी, नहीं तो मनुख उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। प्रथम, सत्संग विच आउंदिया आउंदिया एक दिन शब्द चोट कर गया, उदास हो गया, निराश हो गया, अकल तो चोट खा के उदास हो गया, निराश हो गया। अकल इतनी महान, संसार छोटा हो गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो ये संबंध च मैं कुछ बोल थोड़े सामने रखा। जैसे महाराज कहिंदे ने, आवन जान एक खेल बनाया, अज्ञाकारी की नहीं माया। बहुत महान बारीक बीन मनुख नो सब तमाशा प्रतीत होंदा, खेल कुछ भी नहीं। कितने लहरां बन रही ने, मिट रही ने, बन रही ने, मिट रही ने, संसार बन रहा है, मिट रहा है, मनुख जम रहे ने, मर रहे ने, जीव जम रहे ने, मर रहे ने, तमाशा खेल। अकल महान होवे, मनुख छेती उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा, अकल तो चोट खा के। इस संबंध च भी मैं गालिब दी एक नज़म थोड़े सामने रखा। वो कहिंदा है, बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की ये बच्चियां दा तमाशा, बच्चियां दे खिडौने और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तिफल बच्चे नू कहिंदे ने, इतफाल बच्चियां दी जमा बहुवचन। बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की है छोटे बच्चियां दा तमाशा, खिडौणिया की खेड। बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, दिन रात बच्चियां दा तमाशा हो।

धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, नहीं खाऊंदा होवेगा हिंदू गऊ, पर पराया हक खा रहे तो गऊ भी खा रहे, नहीं खाऊंदा होवेगा मुसलमान सुअर, पर पराया हक खा रहे तो सुअर ही खा रहे। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, एक देश दूजे देश का हक मार जाता है, बड़े वड़े वड़े देश जो छोटे देशों का हक खो लेंदा है, सारी दुनिया च इस तरह चल रहा है, वड़ियां कौमां छोटी कौमां का हक खो लेंदियां ने, वड़े मनुख छोटे मनुखां का हक खो लेंदे ने, सुअर खांदे ने या गऊ खांदे ने और की है, अगर इस हिसाब नाल लोगे तो सुअर खांदे ने गऊ खांदे ने। हक पराया नानका उस सुअर उस गाए, गुरु पीर हामा तां भरे जा मुरदार ना खाए। गुरु पीर हामी भर सकदा अगर मुरदार ना खावे, तो मुरदार की है, हिंदू लई गऊ खाना मुसलमान लई सुअर खाना प्राया हक मुरदार है, मुरदा है, ये तो मुरदा खाना है। औखे ना होना बगौर गहराई नाल देखोगे, वड़े वड़े देश छोटे देशां नूं खा रहे ने, मुर्दे खा रहे ने, वड़ियां वड़ियां कौमां छोटियां कौमां दा हक मार जांदियां, वड़े वड़े मनुख छोटे मनुखां दा हक मार जांदे ने। जद किसे दा हक मार लिया तो मुर्दार ही खादा है और की खादा है, इसे नूं हराम कहंदे ने, ये भी मैं अर्ज कर दें। और महाराज कहंदे ने बड़े ने इतनी वड्डी सियाणप है, खांदे भी हराम ने, अगले नूं कख भी नहीं पता चलता, खांदे भी मुरदार ने, अगले नूं कुछ भी नहीं पता चलता, इतनी दृष्टि ते है, अंधेरे च वेख सकदे ने, रोशनी च नहीं वेख सकदे। तो जो अंधेरे च वेख सकदा है रोशनी च नहीं वेख सकदा, गोगू है और कोई की है, गोगू है। संपत दौल झूल संग झोलत, माया मगन फिरत गोगना। सतगुरु ने उस प्रश्नकर्ता नु चुप करा दिता सी जिसने किया सी महाराज शब्द सारियां दे हिरदियां नु रोशनी नहीं देंदा, सूरज देंदा है, सूरज सारियां लई बार चानना कर देंदा है, गुरु दा शब्द सारियां दे हिरदे च प्रकाश नहीं करदा। फिर ये करोड़ां सूरजां वर्गा किस तरह होया, दो शब्द बर्दाश्त कर लेना, हाथ जोड़ के मैं माफी मंगा। घुग्गू थोड़े ने बहुत ज्यादा नहीं ने, पंछियां दे च पशुआं दे च ओ थोड़े जिया ने, जिन्हां रात दी तारीकी दे च दिखाई देंदा है, दिन दे चानने च नहीं दिखाई देंदा। मनुखी दुनिया च ए घुग्गू बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने, झूठ दे च तेरा सांदा है, सच दे च कोई नहीं, गंदे गीतां दे च तेरा सांदा है, शब्द दे च कोई नहीं, बिखे नाद दे च तेरा सांदा है, रब्बी संगीत दे च कोई नहीं। इन्हां दा तालमेल रात नाल बैठदा है, दिन नाल नहीं। तो चूंकि रात नाल ताल बैठदा है, तो इन्हां ने साधन भी उस तरह दे बनाए ने, क्लब ने, थिएटर ने, शराबखाने ने, वैशीहाले ने, जुए खाने ने, सब रात नूं खुलदे ने, इन्हां दे दरवाजे रात नूं खुलदे ने, इन्हां दी रौनक रात दी है, दिन दी नहीं है। लॉस एंजलिस दे च इक सज्जन मैनूं कहण लगा, उत्थे भी किधरे धन गुरु नानक देव जी महाराज का हुक्मनामा आया सी, ते उस दिन किधरे हुक्मनामे की कथा करनी सी, इतवार का दिन सी, राती होवन कालियां सुपे दा सेवन, देहो बग्गा तप्पे घना कालियां काले वन। पहले पातशाह जी का वाक है, सूरज दिन चिट्टा चढ़े है, पर कालियां चीजां ते कालियां ने, कोई चिट्टियां नहीं होईयां, रात काली बोली है, बड़ी भयंकर मसया दी रात, पर चिटियां चीजां ते चिटियां ने, कोई कालियां नहीं होईयां।
महाराज कहते हैं करोड़ा भी दुष्ट मिल जान संत अपनी सजनता ही नहीं छड़ता, भावे कितनी मसिया की रात हो जाए कितनी कालक हो जाए ओदी चिट्याई रहेगी। राती होवन कालिया सुपे दा सेवन, मल्ला पहला सोई मल्ला पहला है, पहले पातशाह जी का वाक। इनू कबीर अपने ढंग नाल इंज बयान करते हैं, संत ना छाड़े संत ही जे कोटक मिले असंत, मलयागर भयंगम बेड़े ओ तो शीतलता न तजंत। इन्हां इलाकों ते चंदन नहीं है, चंदन भारत विच मैसूर स्टेट विच बहुत ज्यादा है, कर्नाटक विच थोड़ा जिहा, तमिलनाडु विच भी है पर ज्यादा कर्नाटक विच है, थोड़ा थोड़ा आंध्रा च भी मिलता है, मध्य भारत विच भी मिलता है, पर अच्छी नस्ल का जिहड़ा चंदन है बावन चंदन ओ कर्नाटक विच है, बड़ा कीमती। अक्सर जद चंदन दे लकड़ की कटाई आती है तो फिर मोर छड़े जांदे ने, क्यों चंदन नू सप लिपटे होंदे ने, कोबरे फनियर नाक। चंदन बड़ा शीतल है, चंदन बहुत ठंडा है, तो सप दे सिर दे जिहड़ी जहर आउंदी है अगर वध जाए सीमा तो फिर खौलदी है, अगर उस नू कोई जानदार चीज जानदार जीव ना मिले हो सकता

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

संकोच करके वापस पे करूंगा। सती पाप कर सत कमाए, बहुत वड्डा दानी है, जरूर बहुत वड्डा बेईमान होवेगा, क्योंकि पापा बाजो होवे ना ही मोया साथ ना जाए, बहुत वड्डे पाप ना कीते जान तो इतना धन कट्ठा ही नहीं होगा। फिर पाप का बोझ लाने वास्ते दान, महाराज कहते ने किस तरह हो सकता है, जिहड़ा कट्ठा कीता है पाप नाल, प्राप्त कीता है पाप नाल, उहदे देण नाल पुन किस तरह हो गया। सती पाप कर सत कमा है। धार्मिक इकट्ठ, धार्मिक सूझ बूझ नु पैदा करन वास्ते गुरु द्वारे होए सोझी पाइस, इत्थे आपां आया सूझ ते समझ लैण वास्ते। किस दी समझ? घर दी समझ, दर दी समझ। दर घर की सोझी ना है, ना घर दा पता ना दर दा पता। हुण होर भी मैं अर्ज करा, घर दे च प्रवेश उसनों मिलदा जिहड़ा पहले दर ते पहुंचे, पहले दर ते पहुंचना होंदा, दरवाजा पहले होंदा है। घर बाद दे सो दर के हा, सो घर के हा जित वै सर्व संभाले। एक होर भी अर्ज करदे हां, परमात्मा निराकार है, आकार तो रहत है, इनू बयान करके मैं अगे चला। सारा आकार उस तो आउंदा जिहदा कोई आकार नहीं, सारे रूप उस तो आउंदे ने जिहदा कोई रूप नहीं, सारे रंग उस तो आउंदे ने जिहदा कोई रंग नहीं। चकर चैन अर बन जात अर पात नहिं जे, रूप रंग अर रेख बेख को कह न सकत, अरूप हैं अनूप हैं। या इंज कह लो, सारे मजहब भी उस तो आउंदे ने जिहदा कोई मजहब नहीं है। ऐ शब्द भी सुन लो महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी दे, नमस्तम अमजबे, नमस्कार है प्रभु तैनू, तेरा कोई मजहब नहीं, कोई मजहब नहीं। नमस्तम अमजबे, नमस्तस्त अजबे, हे अजब स्वरूप परमात्मा तैनू नमस्कार, तेरा कोई मजहब नहीं। ना तू हिंदू है, ना तू मुस्लिम है, ना तू सिख है, ना तू ईसाई है, ना तू यहूदी है, ना तू पारसी है, ना तू जैनी है, ना तू बौद्धी है, तेरा कोई मजहब नहीं, तेरी कोई जात पात नहीं, तेरे कोई तात मात नहीं, तेरा कोई मजहब नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बड़ी हिम्मत ते बड़ी जुरत दिखा रहे ने थे, नमस्तं अमजबे, नमस्कार है प्रभु तेनु, तू अमजब है, तेरा कोई मजहब नहीं। मजहब एक रास्ता है, मजहब का अगर कोई माण भी कर रहा है तो रस्ते दे चे, ठीक है रस्ते चे, घर तक पहुंचने वास्ते रास्ता चाहिए। घर पहुंच गया कोई मजहब नहीं, क्योंकि जिसका घर है, जिसके घर दे चे जाना है, उसका कोई मजहब नहीं। सारिया नदियां सागर की तरफ जांदियां ने, हर नदी का किसी मुल्क नाल भी संबंध है, कुछ धार्मिक क्रियावां नाल भी संबंध है, इलाके नाल भी संबंध है, ते हर नदी का अपना नाम भी है। ये गंगा है, जमुना है, गोदावरी है, नर्मदा है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चनाब है, जेलम है, ब्रह्मपुत्र है, इन्हां दा इलाकियां नाल और मुल्क नाल संबंध है। असी कह सकते हैं दरिया हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान दे च वगदा है। फिर इन्हां दे नाम ने, फिर दजला है, फरात है, ये इराक दे विच वगदे ने, तो मुल्क ते इलाके दा संबंध उन्हां नाल जुड़ंदा है, भी ये दरिया इराकी ने, इराक दे ने, उत्थे वगदे ने, दजला फरात उत्थे वगदा। नील नदी मिस्र दे च वगदी है, तो असीं कह सकदे हां इह ते मिस्री है, इजिप्शन है, मिस्र दे च वगदी है, उस इलाके नाल इसका संबंध है, इसका नाम है। थेम दरिया इंग्लैंड दे च वगदा है, असी कह सकते हैं इसका इंग्लैंड नाल संबंध है, इसका नाम थेम है। पर जब सारे सागर दे चलीन हो जाते हैं, सारिया का नाँ एको हो जाता है, कि सागर, ना गंगा ना जमुना, ना सतलुज ना ब्यास, ना रावी ना चनाब, ना गोदावरी ना नर्मदा, ना दजला ना फिरात, ना नील

परम सम्मान योग साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी हजूर दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सत्कार योग महापुरख संत बाबा जवाहर सिंह जी और संत बाबा तारा सिंह जी होना दी बरसी दी याद अंदर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत बाणी नूं आप जी श्रवण कर रहे से। सन्मान योग भाई साहब भाई जसबीर सिंह जी पौंटा साहिब वालिया ने हजूर दी बख्शीश नाल अपनी रचना तो सतगुरु दे अमृत बचन कीर्तन और विचार असानू श्रवण कराई। सत्कार योग बाबा सतनाम सिंह जी उन्होंने जो शब्द कहे ए उन्हां दी गरीब निवाजी है। धन गुरु रामदास जी दे पवित्र दरबार दे अंदर दिन रात गुरु चरणा विच समर्पित ने। आओ धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी अमृत बाणी विचों हजूर कृपा करन आप अपने शब्द दी अपनी कला वरतौन अदब भावना और श्रद्धा दी दात बख्श के विचार करा लैन। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। आप जी ने कीर्तन दी समाप्ति ते भगत रविदास साहब जी उन्हां दी पवित्र रचना तो उचारण कीते हुए अमृत बचन श्रवण कीते ने। पीड़ एक ऐसी अंदर दी तड़प है खिच है ना ता इस दा कोई रूप है ना इस दी कोई शकल है ना इस दा कोई कद काठ और आकार है क्योंकि किसे नू कोई चीज समझानी होवे ते आपां उदाहरण देने हैं। जे किसे दे मिठास दी गल करनी होवे ते आपां शब्द वरतनिया एदी जबान शक्कर वर्गी मिठी है। जे किसे दी जबान कुड़तन नल भरीए ते असी शब्द वरतनिया ए जहरीले शब्द अपनी जबान तो कहिंदा है एदे बोल जहर नलों वध कौड़े ने। उदाहरण तां लै ली ना मिठे बोलां लई भी उदाहरण है कुड़तन भरे शब्दां नाल लई भी उदाहरण है। किसे दे रूप दी गल करनी होवे ते किसे रंग नाल किसे पंछी दे आकार नाल उहदे खंभां नाल तुलना देंगे। पर चेते रखियो दर्द एक ऐसी चीज है जिदी तुलना नहीं दित्ती जा सकती किसे नू उदाहरण दे के समझाया नहीं जा सकदा। दर्द ता केवल ओही जानदा है जिदे अंदर पैदा हो जाए। दर्द ता अनुभव है कोई रंग कोई शकल नहीं। भाई साहब उन्होंने बहुत सोहनी उदाहरण दिती क्योंकि पावा कुछ होर बोलना सी जो प्रकरण चलदा है एदे आधार ते।
देखो संसार दे हर बंदे दियां अखां विच पानी है, परमात्मा ने दियां पुतलियां विच पानी पैदा कीता है। रोंदे सारी दुनिया विच सारे लोग एक जैसा ने, चाहे कोई अनपढ़ होवे, पावे कोई पढ़िया होवे, चाहे विद्वान होवे, पावे कोई अज्ञानी होवे, दुनिया दे अंदर रोना ते खसना इन्हां दोनां दी भाषा इको जिही है। जदों लोक रोंदे ने उदों भी तरीका रोण दा इको जिहा है, ते जदों खसदे ने उदों भी मुख तों खसण दा तरीका इको जिहा है। इहदे लई कोई जात कोई पात कोई बरादरी नहीं, रोण दा तरीका एक है। पर चेते रखियो अंदरों रोण दी बिरती सब दी वखरो वखरी है। कोई धन नूं रोंदा, कोई संसार नूं रोंदा, खिमा करियो कोई परिवार नूं रोंदा, कोई करोड़ां विच्चों एक अद्धा जो परमात्मा लई रोंदा, रब लई रोंदा है। वो दर्द कैसा है? गुरु साहिब दे वैद हरदास दी गल भाई साहिब ने कीती, ते सतगुरु ने ओ अमृत बोल बाणी विच भी कहे, कहन लगे वैद चमड़ी दे रोग जानन वालिया मेरे आत्मा दे अंदर दी दर्द नूं तू जान सकेगा, तू पेट दी दर्द दा इलाज कर सकने, तू मस्तक दी दर्द दा मत्थे दी पीड़ दा इलाज कर सकने, तू शरीर दे अंग विच दर्द होए दवाई दे सकने, पर जिदे सीने दे विच प्यारे दी खिच होवे ओदी दवाई तेरे कोल भी नहीं, जा तेनू ता दर्द दा पता ही नहीं, वो दर्द कैसी हुंदी है। असी अमृत बोल पढ़ने आ, वैद बुलाया वैद की पकड़ टंडोले बां, ओने नबज केवल देखी पर भोला वैद ना जाने, करक करेजे माह सोकत जाने पीर पराई। एक उर्दू दे विद्वान ने इस शलोक दा तर्जमा कीता है कि करक करेजे माहे, वो लिखदा है वैद ने जब नब्ज देखी तो आपने फौरन कहा, वैद ने जब नब्ज देखी तो आपने फौरन कहा, नब्ज को क्या देखते हो, नब्ज में रखा है क्या, जिस मर्ज की जुस्त जू में नब्ज पे रखते हो हाथ, मुझे दर्दे इश्क है और इश्क है मौला के साथ। तेनू की पता, जिस मर्ज की जुस्त जू में नब्ज पे रखते हो हाथ, मुझे दर्दे इश्क है और इश्क है मौला के साथ। ए दर्दमंदा दे बोलने बाणी विच, जिन्ना जिन्ना नू बिरखा दी दर्द उठी ओना कुठिया खोया ने उस दर्द विच फिर रब्बी गीत गाए। बाबे फरीद अंदरे दर्द सी ते ओना ने दर्द नू पुकार के क्या, रब जी के देखो मेरी एक हालत, चिंत खटोला वाण दुख आ दर्द, चिंत खटोला वाण दुख बिरह विशावन लेफ, एओ हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वेख, दूजे नू की पता साडी दर्द दा। ओना अंदर दर्द उठी, ओना शब्द कहे तन सुक्का पिंजर थिया, तलिया खुंडे काग अजे सो रब ना बौड़ियो, देख बंदे के पाग। उस दर्दमंद महापुरख ने कहा के कागा करंग टंडोलिया, सगला खाया मास, ए दो नैना मत शुगो पिर देखन की आसो। एक दर्द है, कबीर साहब अंदर दर्द पैदा होया, ओना शब्द बड़े पाप पूर्त गए, पंत निखारा कामनी लोचन भरी ले उसासा, उरना पिजै पग ना किसै खर दर्शन की आसा, उडो ना कागा कारे बेग मलीजे अपने राम प्यारे। ओ दर्द उठी नामदेव अंदर, मैं बौरी मेरा राम पतार, रच रच ताको करूं शिंगार, भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग, तन पन तन मन राम प्यारे जोग। वैगुरु मेर करे, पर याद रखियो कि दुनिया दी दर्द उठे
ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰਦ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ, ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜੇ, ਇਸ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਿਓ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਲ ਮਤ ਖਿੱਚਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਏ, ਇਹ ਕੈਸੀ ਮਿੱਠੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਉ ਜਨਨੀ ਗਰਭ ਪਾਲਤੀ, ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਉ ਜਨਨੀ ਗਰਭ ਪਾਲਤੀ ਸੁੱਤ ਕੀ ਕਰ ਆਸਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੀ ਏ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਤਨ ਖਾਟ ਦੇ ਘਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਚ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖੰਡਾਇਆ ਤੇ ਜਿਉ ਜਿਉ ਉਹ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਦਰਦ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਚੀਖ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਵੀ ਏ, ਕੁਰਲਾਂਦੀ ਵੀ ਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਖ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਚੀਕ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਦਰਦ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਦਰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਚ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਪਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਦ, ਜਿਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਕੁਰਲਾਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਿਗਾਸ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਰਦ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਗਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਪੈ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਾਨ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ, ਉਹਦੇ ਧਨ, ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕਰਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਾਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਹੀ ਕਮਾਈ, ਯਾਦ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੁਛ ਰਹਿਮਤ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਣਾ ਸ਼ਬਦ, ਮੌਤ ਸ਼ਬਦ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇਮ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਏਕਤਾ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸਮਾਨਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ
कोई भी राज पदवी ते बैठदा ते ओए शब्द कहिंदा कि असी जे आ गए तो गरीबी नूं बिल्कुल खत्म कर देंगे। जदों किते गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च लोग शब्द कहिंदे ने ते अंदर वाला कहिंदा मना इना गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नहीं पढ़ी। किसे दी खत दी तली ते पैसा रख सकते हो वक्ती तौर ते, किसे दी खत दी तली ते रोटी दा टुकड़ा रख सकते हो, पे चेते रखियो मस्तक दियां लिखियां केवल रब दियां ने, दुनिया दी कोई ताकत मस्तक दे लिखे हुए लेख नहीं मिटा सकती। दुनिया भी बेनती समझो मेरी कि आर्थिक पक्षों एकता सुरता हो सकती है। जेड़ा सिख रोज बाणी पढ़दा एक दाते एक पेखारी जी उलामा नहीं दे रहा। सच्चे पातशाह गुरु रामदास कहिंदे ने सब तेरे चोज विडाना, यह उहदे चोज ने, तू उहदे चोजां नूं कदी खत्म कर सकेगा? एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना, जेड़ा रोज आसा की वार सरवण करदा ते जदो ए शलोक सुनदा आपे भांडे साजियन आपे पूरन दे इकनी।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वाह लगी, ना जमा दी तत्ती वाह लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

गहने पौन पानी बैसंत चांसुर जुतार सगली धरती मातन वर्तन सर जंजा नानक मूसे ज्ञान बिहूनी हाय गया जमकाल महला पेला वन चेले नचन गोरे पैर हलान फेरन सिर उड़ उड़ावा चाटे पाए देखे लोक से कर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पिछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान

जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़े है चंगा अपना करप नो नीज सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करिंदी आइए को रहना भरिए पाइए को रहना भरिए पाइए।

दे मंगे से सगुण सो करे संसार चोरा जारा ते कुड़िया रखा रा बाबे कार एक होंदा खा चले था तिना बिकाई कार जल था जिया पुरिया।

पौड़े बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन विच हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

0: होम सचियार कूड़ियार होम च पापुन विचार होम नर सुरग अवतार होम छसे होम च रोवे होम च भरिए होम भी तोवे होम भी जाति जिंसी खोवे होम च मूर्ख होम भी सियाणा मकूत की सार ना जाना होम च माया होम छाया होमे कर कर जंतु पाया होमे बूझे तां दर सूझे ज्ञान भी होना कथ कथ लूझे नानक हुक्मी लिखिए लेख जेहा वेखे देहावे
1: होमे एहा जात है होमे कर्म कमाहे होमे एही बंधना फिर जो नी पाहे होमे किथो हो उपजै कर संजम एह जाहे होमे एहो हुक्म है पै करत फिराहे होमे दीर्घ रोग है दारू भी इसमाहे कृपा कर जे अपनी तां गुरु।

पौड़ी सेब की दिशन तो खी जिन्हें सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सो के धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

0: दीपा लोहा मंडला खंडा बिरपंडहा अंडू जेरी जुत पुजा खानी सेक जा सोमत जाने नानका सारा मेरा जनता नाग जंतु पाए कैसा माले सबनहा जिन करते करना किया चिंता भी करनी ताहा सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वच तिस दीपान पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग।
1: महला पहला लख ने खेन चंगी आईया लख पुना प्रवाण लख तप उपर तीर्था सहज जोग बेबाण लख सुरतन संग्राम रण में है छुट्टे है प्राण लख सुरती लख ज्ञान तिहा।

0: महला पहला पर गड्डी लदिए पर परिये साथ पर बेड़ी पाइए पर गड़िए खात पढ़िए है जेते वर्ष वर्ष पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल और हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या।

पहला दुख दारू सुख रोग पे जा शुभकामना होई, तू करता करना में ना ही जाहो करी ना होई, बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ, जात में जो जोत में जात अगल कला भरपूर रहा, तू सच्चा सहसू

0: धुआ पूरा तपे का सत गिर धुआ हो का जुगरा थगन का कूड़ा गैर धुआ हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में है सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पुठानी अमलकिया
1: चारे वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप भक्त कर नीच

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आख पाए हुए प्राण सटिए फिर पाया हो रे नानक तग न टुटे जे तग हो वै जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत दरगे अंदर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पड़े निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी बे तग आया पे बते बड़।

ओडिशा में दयाल कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म लाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण तक।

लोक महला पहला जेकर सूतक मनिए सब ते सूतक होए गोया ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाज ना कोए पहला पानी जीव हज थरिया सब कोए सूत क्यों कर रखिए।

सुचे अगे रखियों कोई ना पिटे जाए सुचा है के जे ब्या लगा पंछ लोक पहती जाए सटिया किसे लगा दोख आण देवता पानी देवता बैसन तुर देवता लून पंजवा पाया किरतता हो पाक पवित पापी सतन कटिया थुका पिया तित जित मुगनाम न उचरे।

नमस्तल प्रणाम समस्तल प्रणासे अगंजुला नामे समस्तल निवासे निर्कामक विभूत समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी स्वतर्मंग विभूत सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करिमल कुनेदा समस्तल निवासी अजाय विभूत गजाय बगनी में हरियंग करियंग करिमल हरी में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र

मत मतंग जर जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पवन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप

चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फनेन्द्र साचर भूत भविख पवार।

किया। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरा सथूला सा, पर कृपा दृष्ट कर भूला।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

सच्चे आकार सच्चे तेरे करने से विचार, सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान।

लख गुना प्रवान लख तब प्रदीर्था सहजोग विवान लख सूरति संग्राम करण में छुटे प्राण लख सूरति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाप पुराण जिन कर दे करना की है लिखिया आवने जा नानक मति मिथिया कर्म सचा।

मानस खाने करे निवास श्री गंगलकाल तिनकर ब्राह्मण पूरे नाद उन्हें पियावे।

0: जी सब्जी भले खाना है, फ्रूटी क्या नहीं जाना है, फ्रूटी क्या नहीं जाना है, फ्रूटी क्या नहीं
1: जाना। पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह, पंजाब दे विच जे रुपये पहुंचने करने ने, जे रुपये बाफर हो गए ता डॉलर इत्थे पहुंचने करने ता गगन सिंह 604-349-1313 24 घंटे दे विच पंजाब रुपये पहुंचणगे ते 24 घंटियां दे विच डॉलर इत्थे ले लियो 6043491313 यूनिट 103-8840-120 स्ट्रीट सरी 6043491313 604-349-1313 गगन सिंह पंजाब फॉरेक्स दावा ते वादा पक्का।

मैं एक दफा जींद देच गौ लै बैठा, खरीद बैठा, बड़ी खूबसूरत सी, चंगी लगी मैनु। हर साल मैं उत्थे धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ज्योति जोत समान पुरब ते जाना हुंदा। महापुरखां दा डेर है ओ मनांदे ने, संत जीवन शाह सिंह जी दा डेर। ओ मेरे कोल पुछण लगे, सुनया तुसी गऊ खरीदी है? मैं क्या, जींद ते रोहतक ए गऊआं करके मशहूर है, अच्छियां अच्छियां गऊआं। मैं कह मैनू बड़ी चंगी लगी है, मैं ले लई। ओ आ गए, कहण लगे मैनू दिखाओ। मैं कह देखो, जींद शहर विच बड़ियां सरावां ने जो गऊआं नाल भरियां रहिंदियां ने। मैं चल के दिखाई, उन्होंने अपना हाथ सिर ते दे मारिया। खिंड के ज्ञानी जी इनू लेके जा रहे हो? मैं क्यों, ये ठीक लक्षण नहीं ने, औखे होवोगे, दुखी होवोगे। ये सिर्फ दिसण नू खूबसूरत है, बाकी ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। थानू लक्षणा का पता नहीं, सानू पता है। जे तुसी गौ लैनी है ते असी थानू लेके देंगे। ओ जिस वपारी कोल मैं लई, जाके संता ने उन्हों डांटिया भी मस्कीन, और इन्हों गौ तक डंगदी देनी सी, ये की कीता है तू? ओ हाथ जोड़ के कहन लगा, महाराज जी की करिए, इन्होंने आप ही पसंद की है, इन्होंने आप ही पसंद की थी। वो कहन लगे, इन्हों लक्षणा का पता नहीं है। वाकई मैनू गौ दे लक्षणा का पता नहीं सी। कुछ लक्षण ऐसे ने, दिस पैंदा है इराकी घोड़ा है, वधिया घोड़ा है, ये वधिया गऊ है। लक्षण ही दस देंदे ने, ये जमीन वधिया है, धरती वधिया है, ऐसी खोजी मौजूद ने। अज ते विज्ञानक ढंग नाल खोज करदे ने, ये धरती बड़ी उपजाऊ है, बहुत वधिया है। लेकिन पुराने जमाने दे सूईए लक्षण देखदे सन। तो मैं अर्ज करा, मनुख धार्मिक है, धार्मिक मनुख दे कुछ लक्षण होंदे ने, ये भी मैं अर्ज करते। उन्हां लक्षणा तो पता चलता है धार्मिक है, मनुख संत है, भगत है। लक्षणा तो पता चलता है संत है, भगत है। ये लक्षण ते मैं बाद विच बयान करांगा। पहले गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ये पावन पवित्र शब्द, वो कहिंदे ने, मैं धर्म दे मार्ग ते चलिया ते हां, अपने उत्ते लैंदे ने, मैं उस बच्चे दी तरह चलिया जिसने अज चलना सिखिया। ते जिस बच्चे ने अज ही चलना सिखिया, वो कितना क चलेगा? एक कदम, दो कदम, गिरेगा, गिरेगा, लाजमी गिरेगा। बच्चा लंबा पेंडा तय नहीं कर सकता। जैसे शरीरक तौर ते मनुख बच्चा होवे, ते ओ बच्चा जिसने अज चलना सिखिया, कितना क चलेगा? एक कदम, दो कदम, गिरेगा, गिरेगा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का शब्द बड़े ध्यान नाल सुनना। भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया, सरवन ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। हे प्रभु, हे गुरु, तू मेरी बांह पकड़, मेरी उंगल पकड़, मैं नहीं चल सकता, मैं तो गिरदा। वाकर दी लोड़ पैंदी छोटे मासूम बच्चे नु चलने वास्ते। मां बाप दी उंगल पकड़ के चलना सिखदा है। सतगुरु कहिंदे ने, हे प्रभु, मैं तेरे मार्ग ते चलते पिया, पर उस बच्चे दी तरह जिसने अज चलना सिखिया, तो कितना क चलेगा? एक कदम, दो कदम, गिरेगा।
धार्मिक तल ते किवें पहचान करोगे, चल भी रहे ते गिर भी रहे, सच बोले है चल पे है, झूठ बोले है गिर गए। अंदर दया दा वासा होया चले है, अंदर कठोरता दा वासा होया गिर गया। अंदर दान दी रुचि पैदा हुई है चल पे, अंदर बेईमानी दी रुचि हुई है गिर गया, गिर गया। अंदर नितनेम करण दा चाव पैदा होया चल पे, पर गंदा लिटरेचर गंदा साहित्य पढ़न दा चाव पैदा हो गया, गिर गया। हमेशा शरीर करके बच्चा बच्चा नहीं रहता। धार्मिक तरते ते कई 70-80 साल तक भी बच्चे ही बने रहते, कुछ भी नहीं, चलते ने गिरते ने, सत्संग भी कर लेंगे ने, कुसंगत भी कर लेंगे ने, दान भी कर लेंगे ने, बेईमानी भी कर लेंगे ने, सच भी बोल लेंगे ने, झूठ भी बोल लेंगे। जीवन भर ऐसा चलता है। इस वास्ते ईरानी सूफी संत सादी ने ते साफ कह देता है, बुजुर्गी बा अकलस्त नके बा साल, तवंगरी बा दिलस्त नके बा माल। बुजुर्गी उम्र करके नहीं है भी ये 70 साल दा है, 80 साल दा है, 90 साल दा है, कहिंदे उम्र करके बुजुर्गी नू ना नापो, अकल करके नापो। अकल कितनी है, समझ कितनी है। कई तन करके बुजुर्ग होंदे ने, अकल करके बच्चे ही होंदे ने, बच्चियां दी गल करदे ने, बिल्कुल बचपना होंदा है। इस तो उल्ट भी हो सकता है, कई शरीर करके ते बच्चे होंदे ने, अकल करके बुजुर्ग होंदे ने। शरीर करके ते 5.5 वर्यां दे ने धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज, जिस दिन गुरुगद्दी ते बैठे ने, अकल करके 100 साल देने बुजुर्ग ने, महान। शरीर करके जो दीवारां दे चिने जा रहे ने, मासूम बच्चे ने, मासूम बच्चे ने, अकल करके बुजुर्ग ने, बुजुर्ग ने। इस तो उल्ट भी है, शरीर करके ते बुजुर्ग ने 70 साल 80 साल हो गए, अकल करके निरे ही बच्चे दे बच्चे ने। मैं कैलीफोर्निया दे कई गुरुद्वारे च देखे 70-80 साल दे बुढ़े 10-11 बजे आ जाते हैं गुरुद्वारे, दिन भर ताश खेडते हैं कई गुरुद्वार, गप्पा मारते हैं, निंदा उस्तत करते हैं, फिर जो संध्या होने लगती है, रहराज साहब का पाठ शुरू होता है, कथा कीर्तन का वेला, भजते हैं इंज जिमें बिच्छू कटेगा, भजते हैं। गुरुद्वारे का नाम है की लिया, मैनू कहना पिया एक नू जद जान लगे, मैं कह 3 जथियां का कीर्तन है अज, एक जथा दरबार साहब तो आया, 2 होर वड्डे जथे दिल्ली तो आए ने, ते मैं कथा भी करनी है, रुक जाओ। कहिंदे इत्थे हुंदा ही रहिंदा, इत्थे होर की होना, इत्थे हुंदा ही रहिंदा। तो उत्थे मैनू कहना पिया कि उम्र करके बुजुर्ग ने, अकल करके बच्चे ने, अकल करके बच्चे। गुरु हरकृष्ण जी महाराज तन करके शरीर करके बच्चे ने, अकल करके बुजुर्ग ने। कलगी धर दे लाडले तन करके बच्चे ने, अकल करके बुजुर्ग ने। 7 साल दा प्रहलाद बुजुर्ग है, 60 वर्यां दा हरनाकश बच्चा है। प्रहलाद नूं कहिंदा है तू जपया कर, जल हरनाकश थर हरनाकश, जब तू जपेगा ते तेनों देख के बाकी बच्चे भी जपनगे। ते 7 वर्यां दा प्रहलाद कहिंदा है बापू की बच्चियां वाली गल करदे हो, जल है राम थल है राम। 7 साल का बच्चा बुजुर्गों वाली गल करता है, और 60 साल का बुढ़ा बच्चियां वाली गल करता है। बच्चियां दे कदी कदाई
कोई बुजुर्ग होंदे ने, बुढ़ियां दे च बहुते ते बच्चे ही होंदे ने गुस्ताखी मर, बच्चे ही होंदे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिंदगी एवें गवाई जांदे ने। ताश खेडदे होयां नूं एक सज्जन ने पूछ लिया, की कर रहे हो? समा पास पै कर दे। फिर मेनू विचकार बोलना पे, समा रहा भी है, तुसी ते आखरी दहाने ते बैठे हो, समा रहा भी है, समय नू सफल करो जिहड़ा थोड़ा बहुत रह गया। आजू समझ कच बिगड़े हो ना ही, बजले नाम मोरा, अजे भी कुछ नहीं बिगड़े, तो संभाल कर ले। पर नहीं, अकल नहीं इतने। शेख सादी कहंदे ने, बुजुर्गी बा अकल अस्त, नखे बा साल, तवंगरी बा दिल अस्त, नखे बा माल। अमीरी माल असबाब तो ना ना पोए दे कोल इतने मकान ने, इतनिया महल माड़ियां ने, इतना कारोबार है, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी धन संपदा है। शेख सादी कहंदे ने, ए अमीरी दी निशानी नहीं, दिल कितना वड्डा है। इस तो पता चलेगा शूम है कि अमीर है, गरीब है कि अमीर है। दिल तो ना पो। मुहम्मद साहब दे निकटवर्ती हजरत उमर, ए बसड़ा तो बगदाद जा रहे सन, उठते रस्ते दोपहर होई, नखलिस्तान उसनू कहने जिते चार पांच दरख्त होवन, थोड़ा जिहा पानी होवे सरोवर, उन्हों नखलिस्तान कहंदे ने। अरब देशां विच आखिर उसकी बहुत महानता होंदी है। उत्थे रुके आराम करन, उठ नू दरख्त नाल बने है, पानी नाल मूंह धोता है। एक नान कोल सी रोटी, खोल के जैसे खान लगे एक भिखारी आ गए। भिखारी नहीं सी, पर चूंकि मंगदा पिया सी सवासे मंगता, उन्हें आखिया, हजरत मैं तीन दिन का भुखा। कूत शहर दे च मैं जाना है, जे बहुत दूर है, मैं भुखा पहुंच भी सकांगा कि नहीं, पैदल हाँ, तुहाडे कोल उठ है, बेहतर होवेगा इस नान दा चौथा भाग मैनू दे दो, चौथा हिस्सा, मेरी थोड़ी भुख मिट जाएगी, मैं चल पवांगा। हजरत उमर ने सारा नान ही दे दिता, ले। पर ओ भी समझदार बंदा सी, कहन लगा, नहीं तुसी भुखे जाओ, मेरा हिरदा ए भी कबूल करन नू तैयार रहे, मैनू इसका चौथा भाग दे दो। पता है हजरत उमर ने की आख्या? तू तीन दिन का भुखा, मैं अधे दिन का भुखा, मेरे ते नान खाना हराम है, ए ले तू। उस मनुख ने आख्या, पहली दफा एक अमीर मनुख देखे है, अमीर मनुख। दोपहर का वकत सी, महात्मा बुद्ध एक पिंड तो दूसरे पिंड जा रहे ने, नाल चेला है आनंद, जो रिश्ते दे चचेरा बिरा सी, चेला बन गया सी, नाल सी। उन्हें करमंडल पानी का नाल भर लिया, बई दोपहर का वकत, बिहार की गर्मी, आखिर दो को दा पेंड है, चार मील का पेंड है, अजे अद्धी वाट तय हुई होगी। महात्मा बुद्ध ने आख्या, आनंद तू नाल पानी लिया? हां लिया। दे करमंडल दे दिता, सारे का सारा एक बूटे च पा दिता। आनंद कहिंदा, भगवान सानू प्यास लग सकती है, अजे ते रस्ता बहुत रहिंदा है, अद्धी वाट तय हुई है, सानू भी प्यास लग सकती है, तुसी सारा पानी दे दिता। महात्मा बुद्ध ने आख्या, सानू प्यास लग सकती है, ये प्यास तो मर रहा सी, मर रहा सी,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਮੰਡਲ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਵੱਖ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਸਵੰਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10 ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਦਸਵੰਦ ਕੱਢਿਆ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ, ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਨ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਾਨੀ। ਉਹਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਉਸ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਦਾ ਹੀ 10 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਰਮੰਡਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਗਰੇ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਲੋ ਸਿਰ ਹੈ ਸਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਜਗਤ ਦਾ, ਸਭ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰੀ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇਤਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰੀ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਦਿਲ ਦੇ ਚ ਵਿਰਾਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਆਖੋਗੇ? ਮਹਾਸ਼ੋਮ ਮਨੁੱਖ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ। ਲਕਸ਼ਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਦੱਸਦਾ, ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁਜ ਬਲ ਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿ ਲੇਹੋ ਅੰਗੂਰੀਆ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਤੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪੁੱਟੇਗਾ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਚ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ। 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੇ, ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦਾ, ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚੱਲ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਅੱਜ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰਫ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਸਨੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।

कबीर कहिंदे ना पारो सी के जो हुआ तू अपने भी जान, केड़े चक्करां च तू पिया, पड़ोसी दी अर्थी निकली है तेरी भी निकलेगी, केड़े चक्करां च तू पिया। पाड़ो सी के जो हुआ तू अपने भी जान, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। होया किसी का नुकसान होवे पे मेरा तो ना होवे, होइए किसी की बेइज्जती होवे पे कम से कम मेरी तो ना होवे। कोई असाध रोग असाध बीमारी चंबड़िए किसी नूं, कम से कम मैनू तो ना चंबड़े, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अंदर चिंता बनी हुई किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। दूसरा ऐसा होना चाहिए, मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, ऐसा होना चाहिए। पर अंदर चिंता बनी हुई मता ना होए। पता है गुरु तेग बहादुर साहब इस श्लोक च की कह रहे हैं, जो होंदा है वह होंदा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा, चिंता केड़ी गल परे सुट। जो होंदा है वह होंदा है, तेरे लख रोकण दे बावजूद भी नहीं रुकेगा, जो नहीं आउंदा नहीं आउंदा, तेरे लख करण दे बावजूद भी नहीं होवेगा। जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं आउंदा नहीं आउंदा। तू लख कोशिश कर मैं बुढ़ा ना होवां, जवानी बुढ़ेपे च बदलेगी, बस एको ही उदाहरण काफी है। तू लख कोशिश कर मेरे चिट्टे वाल ना हुण होणगे, कर जिन्ने उपाय करने ने कर ले, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पर चिंता है हो ना जावे, ऐसा होना चाहिए, मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, ऐसा होना चाहिए। पर अंदर चिंता है मता ना होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहिंदे जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। इसे नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज खुलासा करके बयान करते हैं, जो होवा हो वत सो जाने, आख्या गया ना सानूं हुक्म मन्नो, ते हुक्म की है, जो होवा हो वत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हो गया होना सी, होना हार है, तेरे कीते कर्म उस दे बने भोए विधान, जो कुछ होया है ये होनहार सी, होके रहना सी। हुण इस नूं खिड़े मत्थे कबूल कर ले ते प्रभु दा चिंतन कर। पर हुण गिलियां नाल भरिया ऐसा ते नहीं होना चाहिदा सी, ये क्यों होया है? एक सूफी संत इस नूं इंज बयान करदा है, जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा, सकूने कलब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है सो हो रहेगा। मन चला जांदा है गुजरे हुए समय दियां यादां विच, मन चला जांदा है आने वाले समय दी चिंता च, इनू लिया वर्तमान विच, ते वर्तमान की है एकदम एकदम। टुक दम करारी जो करो हाजर हजूर खुदा है, बस एक दम दे चले आओ, इस मन नो भगवान हाजर नाजर है। ना किसे मंदिर चो मिलेगा, ना किसे गुरुद्वारे च, ना किसी मस्जिद च, ना किसे चर्च दे च, ना किसे तीर्थ दे च, ना किसे होर पहाड़ दे चों गुफा दे चों। जद भी लभेगा ये नौ निध नाम, नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। गुरुद्वारे गया होया उसका सफल, जिसनों समझ आ गई गुरु नूं अंदरों प्रगट करना। मंदिर गया होया उसका सफल, जिन्हों पता चल जाए हरि नूं अंदरों प्रगट करना, और जीवन नूं हरि मंदिर बनाना। बारों हिंदू वीरां ने सफल, जिन्हों पता चल जाए हरि नूं अंदरों प्रगट करना और जीवन नूं हरि मंदिर बनाना। बारों हिंदू वीरां ने एक प्रतीक बनाया है, जिथे जिथे हिंदू टेंपल होंदे ने दरवाजे ते एक घड़ियाल लटका देंदे ने, अंदर मूर्ति आउंदी है, मूर्ति अंदर आउंदी है, ते घड़ियाल वजा के अंदर जाना एक प्रतीक है कि गुंजार करके आवाज करके धुन अलाप के ही अंदर प्रवेश कर सकोगे। ध्यान नूं ले जाण वास्ते धुन चाहीदी है, धुन दे आसरे ते ध्यान अंदर जावे। घड़ियाल लटका रखे उन्हों वजांदे ने, फिर अंदर जाते ने मूर्ति दे दर्शन करते ने, मूर्ति तो अंदर है घड़ियाल बाहर है। गुरु नानक ने नुक्ता निगाह ए रखिया, अगर

जपो त एको नामा अवर निराफल कामा अवर काज तेरे किते ना काम मिल साद संगत भज केवल नाम ए रब्बी दौलत ए रब्बी सौगात धन गुरु नानक देव जी महाराज सारियां दी झोली च पावे सारियां दियां झोलियां भरन सारियां दी जिंदगी सफल होवे सारियां दा और इत्थों दे मुखी सजणा दा सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद बोल चुक दी शमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन

क्या वाकई परमात्मा समझ दे चाह जाता है? कतई नहीं, कतई नहीं। अगर वो समझ दे चाह जाता है तो मेरी समझ वड्डी है, परमात्मा वड्डा नहीं है। तू समरथ वड़ा मेरी मत थोरी ना। हे प्रभु, तू थे सागर दी तरह है, मेरी अकल मेरी समझ ते एक छोटा जिहा प्याला है। ये प्याले दी सागर किस तरह आएगा? लेकिन एक समझ मिलती है कि समझ समझ के ए समझ मिलती है, हे प्रभु मैं तेनू नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। क्यों? तू मेरी समझ तो वड्डा है। और समझ मुतासर हो जाती है, समझ प्रभावित हो जाती है, हिरदा याद कर लग पैंदा है। जिन्ने चिर तक साड़ी अकल परमात्मा तो प्रभावित नहीं, हिरदा याद नहीं कर सकता। वाहगुरु वाहगुरु जबान करती रहेगी, याद नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं होगा। जो मेरी समझ दे च नहीं, नहीं है। क्या समझ दे चाह जाता है? नहीं। समझ समझ के ए समझ मिलती है कि मैं तेनू नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। मैं पढ़ रहा से एक दफा सुकरात दी आटो बायोग्राफी, उन्हें अपनी आप बीती लिखी है। कहिंदा है, जद मैं छोटा जिहा बच्चा सी, बच्चियां नाल खेड़दा सी, मैं अक्सर डींगा मारदा सी, मैं सब कुछ जानना, सब कुछ जानना, तुसी कुछ भी पुछो तो मैं दसांगा। कहिंदा बच्चियां दा मैं लीडर बनिया होया सी, नेता बनिया होया सी, बच्चे मैथों भयभीत होंदे सन, बच्चे मेरा रोब मनदे सन, बच्चियां दा मैं मुखी। कहिंदा जद मैं जवान होया तो फिर मैं ये कहना शुरू कीता, कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानता, नहीं जानता, सारे सवालों का जवाब नहीं देंगा, मैं सब कुछ नहीं जानता। कहिंदा अज मैं बुढ़ा हो गया, ऐलानिया कहिंदा कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं जान जान के ए जाने है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न जान छाना रे। ओही महामूरख है जिहड़ा कहिंदा मैं सब कुछ जान ले, खाक जानेगा? ज्ञान दा ते सागर पिया है बाहर, तेरी अकल प्याला किस तरह भरेगी? जिंदगी भर दी जानकारी मनुख दी इंज है जिवें सागर दे चो एक चम्मच पानी दी मिली, इस तो ज्यादा नहीं, इस तो ज्यादा नहीं। सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना रे। परमात्मा दा रस उस दिन प्राप्त होंदा है कदों? जद मनुख इंद्रिया तो उच्चा उठदा है, उन्हों इंद्र जीत कहिंदे ने, इन्हे जीत लिया इंद्रिया नाल। नास्तिक कहिंदे ने ऐसी कोई दुनिया ही नहीं, ऐसा कोई रस ही नहीं है। क्यों? ऐसा शरीर नूं कोई होर इंद्र ही नहीं है। कुछ वेख के रस मिलेगा, कुछ सुन के, कुछ चख के रस मिलेगा, कुछ स्पर्श करके, कुछ सूंघ के, होर भी कोई रस है ऐसा शरीर रस मान सके कोई इंद्र ही नहीं है। बड़ी प्रबल दलील देंदे ने नास्तिक इस संबंध च, बहुत कुछ कहिंदे ने। इस वास्ते ऐलानिया कहिंदे पाणी दी लोड़ है गुरबाणी दी नहीं, धन दी लोड़ है धर्म दी नहीं, पदार्थां दी लोड़ है परमात्मा दी नहीं। पदार्थां तो बिना जीवना बड़ा औखा है, परमात्मा तो बिना जी सकदे हां। पाणी तो बिना जीवना बड़ा औखा है, गुरबाणी तो बिना जी सकदे हां। धन तो बिना जीवना बड़ा औखा है, धर्म तो बिना जी सकते हैं, इंज कहिंदे ने। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने पाणी ना मिलिया शरीर मरेगा, वाकई शरीर दा जीवना बड़ा औखा होगा। पर गुरबाणी नाल मन ना जुड़िया, सुरत ना जुड़ी, तो मनुख दे अंदर मनुखता मरेगी, इंसानियत मरेगा, मनुख ते जिंदा रहेगा पर पशुआं दी तरह। करतूत पशु की मानस जात,
जिंदा ते रहेगा पशु दी तरह। जी सकता है मनुख परमात्मा की याद तो बिना पशुआं दी तरह जीवेगा। और उन्हां सारे पशुआं दा गुरु नानक ने बकायदा जिक्र किया है, भगतां ने बकायदा जिक्र किया है, बिन सिमरन जैसे सर्प अर जारी त्यों साकत जीवें नाम बिसारी। प्रभु नूं भुला के मनुख इस तरह जीवदा है जिवें सप्प, सप दुध पींदा है, पानी पींदा है, होर तरह तरह की खुराक खांदा है, अंदर जहर वधदी है ते जद सिर जहर नाल भर जाए तो डंग मारदा है। कहिंदे ने औखे ना होना, 97% सप्पां च जहर नहीं आउंदा, अगर मनुख दी किते डैथ हो जाती है तो बह करके आउंदी है, 3% सप्प ने जिन्हां च जहर आउंदा है। पता है धार्मिक ज्ञानी की कहिंदे ने, कोई 1% मनुख हो सकता है जिहदे मन दे जहर ना आवे, बाकी मनुख जहर नाल भरे हुए ने, ईरखा नाल भरे हुए ने, दुश्मनी नाल भरे हुए ने, बदले की भावना नाल भरे हुए ने, हंकार नाल भरे हुए ने, दुराचार नाल भरे हुए ने। कोई एक कद होगा जो जहरीला ना हो, बाकी तो सब जहरीले ने। 97% सप जहरीले नहीं होंगे। दूसरा, सप का डंगे होया शायद बच भी जाए, बंदे दे डंगे हुए तो बचते भी कोई नहीं, ये भी मैं अर्ज कर दें। 2.5 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर, ते 3 करोड़ नू मार के ते 3 करोड़ नू उजाड़ के चाइना दे माओ से तुंग ने क्रांति लियांदी सी। कोई सप 3 करोड़ बंदे मार सकता है? सप डंग मारे उदी जहर खत्म हो जाती है, फिर 15-20 दिन लगनगे जहर बनते हैं। मनुख ते मुल्कां दे मुल्क उजाड़ के भी उदी जहर खत्म नहीं आती, जहरीला बड़ी जहर, मनुख इतना जहरीला। बिन सिमरन जैसे सर्प अरजारी त्यों साकत जीवें नाम बिसारी। बिन सिमरन धिग कर्म करास, काक बटन बिष्टा में वास। सिमरन तो बिना मनुख इंज जीवदा सुभाव करके, सुरत करके, मन करके, जैसे कौआ। कौआ दी बोल बड़े कुरखत ने, ते कौए दे मूंह दे गंदगी आउंदी है। कौआ कहां कपूर चला है, जो फिक्का बोले और गंदा बोले ये ते कौए दी फितरत है। अब सुन के हैरान होगे, 10 पाप मनदे ने, जीवन भर रिपीट आउंदे ने, हजारां लखां बन जांदे ने। 10 पापां दे चों 4 पाप जबान दे ने, 3 पाप मन दे ने, 3 पाप तन दे ने। इस तरह 10 दोख मन दे ने। भारत दे ऋषि मुनि और गुरु नानक देव जी महाराज ने बकायदा जिक्र किया, 10 पुरब सदा दसाहरा। परमात्मा दा नां ही 10 पुरबां वर्गा पुरब है, जो 10 दोखां नूं हर देंदा है, मिटा देंदा है, दसाहरा। 10 दोख केड़े ने, 10 पाप केड़े ने? 4 पाप जबान दे, 3 पाप मन दे, 3 पाप तन दे। 4 पाप जबान दे केड़े? प्रथम, मिथ्या बोलना, झूठ बोलना। दूसरा, व्यर्थ बोलना, वे फिजूल दी गप शप, एवें सिर खपाई व्यर्थ बोलना। तीसरा, फिक्का बोलना। चौथा, कौड़ा बोलना, जहरीला बोलना। ये 4 पाप जबान देने, 3 पाप मन देने, किसे दे तन बारे बुरा सोचना, किसे दे धन बारे बुरा सोचना, और इसे तरीके दे नाल किसे दे माल असबाब बारे बुरा सोचना, जान बारे बुरा सोचना, माल बारे बुरा सोचना, किसी की इज्जत आबरू बारे बुरा सोचना, असमत बारे बुरा सोचना। सारी दुनिया दे खतरा भी 3 तल ते हुंदा, चौथा कोई खतरा नहीं आउंदा। अगर कोई मनुख आखे ना मैं खतरे च हां, तो जान नू खतरा होवेगा, ते जे जान नू खतरा नहीं ते माल नू खतरा होवेगा, ते जे माल नू नहीं ते इज्जत आबरू नू खतरा होवेगा, होर की खतरा हुंदा, होर कोई खतरा नहीं आउंदा। खतरा ये 3 तल ते हुंदा है, और कोई खतरा नहीं आता। जान नू खतरा, माल नू खतरा, इज्जत आबरू असमत नू खतरा।
ਮਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਪ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਲ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਪ ਮਨ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਾਪ ਤਨ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਖੋ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਖੋ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਲੁੱਟ ਲੈਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਸ ਪਾਪ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਦਸ ਦੋਖ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰ ਦੋਖ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਪਾਪ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਫਿੱਕਾ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ, ਕੌੜਾ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ, ਗੰਦਾ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਆਖੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਊਆ ਹੈ, ਕਾਂ ਹੈ, ਕਊਆ ਕਹਾਂ ਕਪੂਰ ਚਰਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੂ ਕਰ ਵਹਿ ਕਾਮ, ਸਾਕਤ ਬੇਸਵਾ ਪੂਤ ਨੇ ਨਾਮ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇੰਝ ਜੀਵਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਾਕ, ਕਿਉਂ? ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੇ 'ਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਗਿਰਨਾ ਕਰੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਲ 'ਤੇ ਕਰੇ, ਇਹ ਕੂਕਰ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਭੈ ਕੂਕਰ ਕਾਮ, ਸਾਕਤ ਬੇਸਵਾ ਪੋਤ ਨੇ ਨਾਮ। ਵੈਸ਼ਿਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਗਨਕਾ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਆਪਣੀ ਵਲਦੀਅਤ ਕੀ ਲਿਖਾਵੇ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਸ਼ਿਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਮਾਜ ਦੇ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸਲੀ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ 'ਚੋਂ ਜਦ ਧਰੁਵ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ,

0: गई है कि धन नाल बहुत कुछ मिल जाता है, शायद धर्म भी मिल जाए। कथा ही नहीं, मकान मिल जाएगा, बाजार दे भोजन मिल जाएगा, होटलों तो रेडीमेड कपड़े मिल जाएंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा, रेडीमेड भजन नहीं मिलेगा, खुद करना पड़ेगा। जैसे मैं फिर अर्ज करा, मैं भोजन छका ता मेरी भुख मिटेगी वरना नहीं, मैं भजन करा ता आत्मक आनंद मिलेगा किसी के करण नाल नहीं। सत्संग तो गुरबाणी तो यह प्रेरणा लेनी है कि अंदरों माला माल होई है, ये दौलत अंदर लभनी पेगी। तो पातशाह की बाणी कहती है, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ ने रपाई, खोज किवें करिए, ते इहदे चों नाम रतन किवें पदार्थ कर जो है पैदा करिए प्राप्त करिए। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ ने पिरा करके कहंदे ने, ऐ भाई खोज कर अपने मन दी, ते मन दी खोज करिए ते फिर की लभेगा। मन खोजत नाम नौ ने पाई, नौ निद जो परमात्मा दा नाम है उदी प्राप्ति हो जाएगी। नौ निद अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। ये बारों नहीं लभेगा। दुनिया दा सब तो बारीक मजमून है कि परमात्मा, दुनिया दा सब तो बारीक काम ते औखा काम की है अपने मन विचो परमात्मा लभना, इस तो ज्यादा होर कोई नहीं। सब तो स्याणा मनुख कौन है जिन्हें मन विचो परमात्मा नु लभ लिया, और मूर्खां तो मूर्ख कौन है जिहड़ा इस तो इनकारी है। मूर्खां सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही ना, महाराज इंज कहंदे ने। वो महान स्याणा मनुख है जिसने अपने मन विचो परम आनंद लभ लिया, ये परम रस लभ लिया, इस नु किवें लभ सकीए, मैं लड़ीवार विचार थोड़े सामने रखनी है ताकि कुछ बुनियादी गल्लां दी सांझ होवे। एवें कर्म कांड सारी जिंदगी ना चलदा रहे, एवें जीवन व्यर्थ दे विच जो है ना जाए। ये जीवन मिले परमात्मा की प्राप्ति वास्ते, बाकी इंद्रियां दे रस ते पशु भी माणदे रहिंदे ने, और उसकी निंदा भी नहीं है। वह सिर्फ शरीर वास्ते मन वास्ते नहीं है, इस वास्ते सारी दुनिया दे तन दे सुख वधदे जा रहे, मन का दुख वधदा जा रहा है। सारी दुनिया दे तन तंदुरुस्त आउंदा जा रहे, मानसिक रोग वधदे जा रहे। मैं ते पढ़ के हैरान होया, सुन के भी हैरान होया कि नौ बंदियां तो बाद हर दसवां अमेरिकन पागल है या पागल होने की हालत विच है। हद हो गई, दुनिया का सब तो संपन्न देश ते सब तो पागलों की तादाद उत्थे ही है। दुनिया का सब तो अमीर देश सब तो ज्यादा खुदकशी भी उत्थे, सुसाइड उत्थे करते हैं, आत्महत्या उत्थे है। कारण बारों माला माल हो गए, अंदरों कंगाल हो गए, बारों सुखी हो गए अंदरों दुखी हो गए, बारों सियाने हो गए अंदरों महामूरख हो गए। तो अंदर दी जिंदगी बेजार, उस बेजारी च जीवना औखा हो गया, दिमागी संतुलन डावा डोल हो जाता है। इस अंदर दी दुनिया दे च उस परम रस नू परम आनंद नू किवें प्राप्त करिए, समय सिर आरंभ करके समय सिर समाप्ति कर देंगा। मैं फिर अर्ज करा, कथा किसी थां तो शुरू करनी पैंदी, किधरे समाप्त करनी पैंदी। शुरू दे बोल पल्ले ना पाए वन तो फिर कुछ नहीं पड़ेगा। इस वास्ते जिहड़ा समा निर्धारित होवे उस समय आप पहुंच जाओ, एक मिनट दस पहले समाप्ति कर दिता करेगा। उम्मीद है आप इतनी बेनती प्रवान करोगे। सारिआं दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद। बोल चुकदी शमा, वाहेगुरु जी का खालसा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀਕੈਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀਕੈਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ। 4 ਪਾਉਂਡ ਇੰਡੀਕਨ ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ ਲਵੋ 388 ਦਾ ਬੈਗ, 2 ਪਾਉਂਡ ਪਲੇਨ ਗੁੜ 298 ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੋਮਾ ਟੋਮੇਟੋਜ਼ 98 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ। ਫਰੂਟੀਕੈਨਾ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਯੂ ਹੈਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ।
3: ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਥੋਰ ਡੇਅਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੀਅਰ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਾਈਟ ਟ੍ਰੌਕ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵਿਦ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਮ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ 8 ਏਕਰਸ ਅਤੇ 100,000 ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਨਰਸਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਬੀ ਯੋਰ ਓਨ ਬਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 5 ਬੈਡਰੂਮ ਹਾਊਸ ਟੋਟਲੀ ਰੀਮਾਡਲ ਵਿਦ ਇੰਕਰਨ ਆਊਟਡੋਰ ਪੂਲ ਰੀਟੇਲ ਸ਼ਾਪ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਵੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਥ ਨੂੰ 604-351-5111

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
2: हम देखा ते डूबी अले मान ए

काटा सीसा श्री अस्के जगत के ईसा पोहपन वृष्ट गगन ते भई सब हिन आन बधाई दई तहन तहन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा खल पवन के सृजन हार।